0: வருஷா பல்ல சொல்லியான் புருஷன் लाग्मा खेली फेरि बच्चादेखि कुकुर बिरालो जस्तो झगडा
1: परेछ
0: सौदा लगेर भित्रै अन्त तँ चाहिँ के भएको
2: अन्त भोलि ड्राइभ पिकनिक आउँदैनस्
0: आउँदिन
2: जम्न
0: आउँदिन आफै जा
2: साँच्चै के आउँदैनस्